सत्यसंगो दाशार्हस्सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्बो निधिरनन्दात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हस्वाभाव्यो जिता मित्रप्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रुतशाद्ध

ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तमः सुधन्वा खण्ड परशुद्धारुणो द्रविण प्रदः दिवस्पृक् सर्वदृक्प्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामगस्साम निर्वाणम् वेषजम् विशक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम्।